वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता रामचंद्रः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वणू धोनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: कृतज्ञता का महत्व. जीवन में मदद पाकर उसे भुला देना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान काम है. लेकिन उससे भी महान काम है समय पर मिली मदद को दिल में संजोकर रखना. सहयोगकर्ता के उपकारों को भूलना तो कायरता है, महानता कदापि नहीं. मदददाता के प्रति हृदय में आदर का दीप जलाकर रखना सही अर्थ में कृतज्ञता है. मानव में मानवता का प्रकाश फैलाने वाला महान गुण है कृतज्ञता. कृतज्ञता अर्थात उपकार या मदद करने वाले के प्रति सदा सम्मान की भावना मन में बरकरार रखना. सहयोगकर्ता के सहयोग का कदर करना और उपकारी के उपकारों के कर्ज चुकाने में ईमानदारी दिखाना भी कृतज्ञता है. मानव को मिली आंतरिक शक्तियों और प्राप्त जीवन मूल्यों का दाता ईश्वर है. प्रकृति मानव को सुख के स्थूल भौतिक संसाधन उपलब्ध कराती है. अतः ईश्वर और प्रकृति के प्रति मानव को सदा कृतज्ञ रहना चाहिए. साथ साथ जिस समाज में मानव जन्म पालन और विकास का अधिकार पाता है उस समाज के हर वर्ग का कर्जा भी हर इंसान पर जन्म से मृत्यु तक रहता है. समाज के प्रति कृतज्ञ होना अर्थात अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना. अतः सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना भी कृतज्ञता का निर्वहन ही है. कृतज्ञता मानव मूल्यों का जतन कराती है, मानव को पशु बनने से रोकती है. कृतज्ञ व्यक्ति संवेदनशील होता है. कृतज्ञता से मानव विनम्र भी बनता जाता है. जहाँ इस महान गुण का वास होता है वहाँ अहंकार का नाश होता है. ये गुण संबंधों को वफादार बनाता है. कृतज्ञता अधिकार के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और प्राकृतिक कर्तव्यों का बोध कराती है. जिस बोध से समाज व प्रकृति के नियमों का मानव खुशी खुशी से पालन करता है. बालक श्रवण कुमार को माता पिता के मातृ पितृ ऋण की कृतज्ञता का बोध था और इस कृतज्ञता के बोध के कारण ही माता पिता की सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए. अतः कृतज्ञता के महान गुण

0: रेणुधुनि 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: तारीख तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
2: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
2: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
5: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@airnews हिंदी और पब्लिक पर @airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
7: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
8: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
9: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
7: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
2: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
10: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
2: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एल ई कनसु।
13: प्रप्रथम बारिगे निम्म हुबळ्ळियल्लि नव हागू युव उद्यमिगळु स्टार्टअप बिजनेस्गळु स्व उद्योग आरंभिसुववरिगे इदोंदु सुवर्ण अवकाश निम्म आलोचनेगळन्नु आदायवागि परिवर्तिसुव कनसिन उद्यमक्के सुभद्र बुनादि हाकुव उद्यम स्फूर्ति नीडुव ओंदु दिनद स्किल डेवलप्मेंट कार्यागार रविवार दिनांक 18 अक्टोबर 2026रंदु एंपवर 365 कल्पनेयिंद कंपनियवरेगे लाभदायक यशस्वी उद्यमिगळागलु कौशल्य अभिवृद्धि ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666 ಗಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ।

0: Sir, for providing us with the encouragement and support to promote awareness about pharmacovigilance and patient safety. I would also like to extend my heartfelt thanks to our ADR Monitoring Center Coordinator, Dr. M.S. Kanachari Sir, Deputy Coordinator, Dr. Santosh Reddy Sir, PV Associate, Dr. Pratiksha Kinney, and the entire AMC team for their continuous efforts towards strengthening ADR reporting, promoting rational medicine use, and creating awareness among healthcare professionals, students, and the community. And finally, to everyone listening to us today, please remember, every medicine matters, every adverse reaction matters, and every report matters. Let us work together towards safer medicines and safer healthcare. Thank you. Namaskara.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणु धोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। आज के इस प्रोग्राम से एक बात जरूर याद रखिए, दवा वही सुरक्षित है जिसका इस्तेमाल सही जानकारी और सही सलाह के साथ किया जाए। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद या शुरू न करें और किसी भी अनचाही प्रतिक्रिया को नजरअंदाज न करें। आइए मेडिसिन सेफ्टी को अपनी आदत बनाएं और सुरक्षित स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। आज के इस एपिसोड में हमने सुना अद्विता गणाचारी को, जो केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फार्म डी की इंटर्न है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु धोनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुबर्णा रॉय, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है। ICMR NITM बेलगावी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर कार्य करने वाला देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। डॉक्टर सुबर्णा रॉय के नेतृत्व में संस्थान ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, इंटरग्रेटिव हेल्थ केयर तथा पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर, हमारे वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो अपने बारे में और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय हूँ। बाई ट्रेनिंग मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, MSc PhD, और ICMR का मैं पिछले 20 साल से ICMR में काम कर रहा हूँ। ICMR NITM जो है, जैसे आपने बताया, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्था है, जो ICMR का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सब मॉडर्न साइंसेस बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं, और हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर शोध करते हैं। जैसे कुछ आता है जो आयुष के अंडर आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, स्वारिकपा, नेचुरोपैथी, योगा, और कुछ होते हैं जो इसके बाहर का भी प्रैक्टिस होता है, जो दादी माँ के नुस्खे टाइप का, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं,
0: होम रेमेडीज,
1: या फिर जो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस है, जो गांव में लोग यूज करते हैं, ट्राइबल हीलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो शोध है, जो इसमें से ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशंस है जो एक्चुअली इफेक्टिव है, और उसके लिए जो शोध है वो हम लोग करते हैं। और जो स्टडीज हम लोग शुरू करते हैं वो फील्ड से शुरू होता है, जो कोई इसका प्रैक्टिस होता है या फिर जो आयुष से आता है उसका लेते हैं, करके उसका सेफ्टी स्टडीज करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी का स्टडीज करते हैं, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, जो उसका केमिस्ट्री है, जो अगर पौधों से काम होता है तो ये पौधों में क्या क्या कंपोजिशन है उसका करते हैं, सीजनल वेरिएशंस का करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं और एनिमल स्टडीज के ऊपर।
0: अच्छा।
1: तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोध करते हैं, और जो अच्छे जो लीड्स मिलता है उसको हम लोग आगे लेके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो होता है हॉस्पिटल्स में, और कुछ होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिजीज के लिए कौन सा दवाई है। और इसमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें बेसिक साइंटिस्ट है जो MSc PhDs है, इसमें हमारे बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, इसमें केमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोग एकत्रित होके ये वैलिडेशन साइकिल हम लोग खत्म करते हैं।
0: अच्छा।
1: और जिसमें अच्छा जो रिजल्ट्स आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स में, इंटेंशन ये है कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलाव आए। सो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिकेसी आल्सो। सो ये हमारा इंस्टीट्यूट का काम है।
0: अच्छा, उसी के साथ सर, ICMR का उद्देश्य क्या है मुख्य?
1: ICMR भारत का जो प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रमुख हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका शुरुआत हुआ था 1911 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। ICMR का जब शुरुआत हुआ था, इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इससे जो फर्स्ट शुरू हुआ काम, वहाँ का वो टाइम का जो भी हेल्थ जो डिजीज था, जो प्रॉब्लम्स था, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका सोल्यूशन निकालना, इसी से शुरू हुआ था। फिर रिसर्च फंडिंग भी एक मेजर एक्टिविटी था, जो नॉन ICMR इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दिया जाता है, तो ये फंडिंग बॉडी के रूप से भी काम करता था और अभी भी करते रहे हैं। सो अभी जो मेन ICMR का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। ICMR का 28 इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री। कुछ है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो कोई एक एरिया के ऊपर या एक डिजीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि हमारा चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम होता है NIRT में, हमारा मुंबई वाला इंस्टीट्यूट जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट है पुणे में जो वायरोलॉजी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरल डिजीज के ऊपर काम करते हैं। ऐसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो बेलगाम में है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। ये छोड़ के और भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च NIHR। सो ये डिफरेंट लोकेशंस में स्थित है और वो जो रीजन का जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकालते हैं एंड देन पूरा नेशनल लेवल पे भी जो मेजर जो डिजीजेज है या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी शोध करते हैं। तो अभी हमारा जो ICMR का जो मेन फंक्शन है वो है पूरा जो कंट्री का हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम, इसके ऊपर काम करना, नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए दवाई निकालना और पॉलिसी गवर्नमेंट को पेश करना। सो पॉलिसी विल कम ओनली आफ्टर एविडेंस। तो हम लोग रिसर्च एविडेंस में डेटा जनरेट करते हैं और उसी को ही हम लोग पॉलिसी करके गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हमारा ICMR का मेन फंक्शन है। ये हो गया ICMR का अपना सेटिंग में।
0: अच्छा।
1: लेकिन ICMR जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ऑल्सो अ फंडिंग बॉडी, तो जो भी हेल्थ रिसर्च दूसरा इंस्टीट्यूट्स में होता है, आप चाहे KLE में ले लीजिए कि एम्स में ले लीजिए कि CMC में ले लीजिए कि और भी कोई भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इसका जो अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स होता है रिसर्च का, इसका फंडिंग होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको रिव्यू होता है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी और जो जिसका ज़्यादा सोल्यूशन आने का चांसेस ज़्यादा है उसको फंडिंग मिलता है। सो इसीलिए ICMR इज एक्चुअली द एंटायर हेल्थ रिसर्च ऑफ द कंट्री इज काइंड ऑफ ICMR।
0: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMR की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है?
1: जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ट्रीटमेंट पॉलिसी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और ICMR वही एविडेंस जनरेट करता है, चाहे उसका अपना इंस्टीट्यूशन से हो या फिर जो उसका कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस को फंड किया गया है, जो मेडिकल बॉडीज है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब इकट्ठा करके एविडेंस तैयार होता है और एविडेंस डिटरमाइंस पॉलिसी। नए ड्रग्स, नए ट्रीटमेंट रेजिम्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी ये सब ICMR हेल्थ रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री के लिए।
0: वर्तमान समय में सर ICMR किन प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं?
1: ICMR इंडिया का, इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मेजर एरियाज ट्रेडिशनली था, उसके ऊपर से अभी नए प्रॉब्लम्स है जैसे कि कैंसर का बहुत महत्व रखता है, अभी नए चीज़ें भी आ रहा है जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का भी हेल्थ इम्प्लिकेशंस आता है। तो ये सब 360 डिग्री ऑफ हेल्थ रिसर्च इज डन बाय ICMR और फोकस उसमें ही रहता है जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट डिटरमिन करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटीज़ है, तो उसके ऊपर ICMR काम करते हैं।
0: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसे बदलाव आए हैं?
1: ये जो स्वास्थ्य का जो इश्यूज है ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। पहले बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा था,
0: बिल्कुल,
1: जो दवाइयाँ आने के बाद या फिर दूसरा टेक्निक्स आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ था। इंसिडेंस बढ़ता गया, जैसे कि अभी हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है, या फिर डायबिटीज़ ले लीजिए, कैंसर्स ले लीजिए, बढ़ रहा है। अभी इन्फेक्शस डिजीजेस पहले जैसे उतना खतरनाक तो नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है जैसे कि कोविड का पेंडेमिक आपको देखने को मिला, अचानक कभी भी कुछ चीज़ आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वाज द मेन रीज़न व्हाई वी हैड लेस बर्डन ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस इन द पास्ट, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नॉर्मल जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उसमें काम नहीं होता है और हमारे पास ज़्यादा एंटीबायोटिक्स है नहीं। तो बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्शियरी केयर सेंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेजिस्टेंट है सब ऑर्गेनिज्म में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ये नए चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्फेक्शस डिजीज में काम होता है। और जो नॉन इन्फेक्शस जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें ये हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च बढ़ाया गया है। और नया जो है वो है जैसे बताया अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम लोग वेटरनरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ सब एक साथ देख रहे हैं हम लोग। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कि कोई फार्म एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन चेन में भी आ जाता है। तो उसको कैसे उसको रोध किया जाए, उसके ऊपर भी काम होता है। सेकेंडली है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बहुत बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस ढूंढने में, और इट बिकम्स मच इजियर टू एक्चुअली मैनेज एंड इवन डिज़ाइन न्यू इंटरवेंशंस।
0: स्वास्थ्य अनुसंधान से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है?
1: एविडेंस से ही पॉलिसी और ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। जब तक हम लोग रिसर्च या स्वास्थ्य का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ये एविडेंस मिलता नहीं रहेगा, और ये भी चेंज होता रहता है। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसका अपडेट होना बहुत जरूरी होता है, और उसके हिसाब से समटाइम्स ट्रीटमेंट में ऑल्सो चेंज, नॉलेज चेंजेस, तो उसका नए नए तरीके आते हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजीज, अभी टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं। अभी जो शोध बहुत साल लगता था, अभी बहुत जल्दी ये शोध होता है। सो टाइम ऑल्सो हैज काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर गेटिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू रिसर्च।
0: मान लीजिए सर कि कोई अगर नई दवा आती है, तो उस पे उपचार पद्धतियों पर किस प्रकार संशोधन या फिर शोध होता है?
1: अगर नए कोई दवाई आता है तो उसका भी एक आने का एक प्रोसीजर रहता है। सो बहुत सारे फेजेस बोलते हैं, वो उतर के फिर नए दवाई आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई जो एक बार ये सब जो फेजेस है ये उतर के आया, देन वो बहुत साल रहा, वो भी कभी कभी नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: बिकॉज सेफ्टी इश्यूज भी रहते हैं उसमें। सो जो पहले स्टडीज में पता नहीं चलता है, तो वो पोस्ट मार्केटिंग भी मॉनिटरिंग होता है। सो ये जो स्टेजेस मैंने बताया, फर्स्ट शुरू होता है लेबोरेटरी के काम से, वो लेबोरेटरी में मॉलिक्यूल्स लेके या फिर कोई ड्रग्स लेके इसके ऊपर हम लोग इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। उसके बाद आता है एनिमल स्टडीज, हम लोग नॉर्मली छोटे एनिमल से चालू करते हैं।
0: अच्छा।
1: कभी कभी ज़ेब्रा फिश में करते हैं, क्योंकि एथिकल रीजन, हमें सबका एथिक्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो मान के ही हमें करना पड़ता है, ताकि एनिमल लाइफ भी कम हो। तो वो लेके उसका अगर सक्सेस होता है तो वो जाता है एफिकेसी स्टडीज में, तो वो कितना इफेक्टिव है एनिमल्स में वो स्टडीज हो जाता है। वो होने के बाद फिर जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स होता है, उसमें बहुत सारा फेजेस आता है। फर्स्ट होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो ये जो फेज वन है, ये बहुत कम लोगों, 10-15 लोगों में काम किया जाता है, और उसमें बेसिकली सेफ्टी देखा जाता है कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो। एक बार सेफ हो गया, देन उसके बाद बड़ा स्टडीज किया जाता है कि हाउ गुड इट इज, वेदर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेहतर है कि ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है। तो अगर उससे बेहतर है या फिर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है तो आगे जाता है। तो फिर देन उसके बाद बड़ा स्टडीज होता है इन लार्ज पॉपुलेशन, मोस्टली मल्टीसेंट्रिक स्टडीज होता है। तो उसमें देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है। देन एक बार वो हो गया, देन मार्केटिंग लाइसेंस होता है, देन मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद एक फोर्थ फेज होता है जो बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। तो ये पोस्ट मार्केटिंग, मार्केट में आने के बाद वो रियल लाइफ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों का ऊपर कैसे असर कर रहा है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी पार्ट रहता है कि हो सकता है कि बहुत सारा लोगों में से एक लोगों का कुछ एडवर्स इवेंट हो, तो लेकिन वो भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग केयरफुल रहे कि अगर एक लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, कभी कभी रैशेस निकलता है कि जो भी है, तो उसमें केयरफुल होना जरूरी है। तो ये होता है। ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ऐसे ड्रग्स है जो पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी विदड्रॉ किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो इसलिए ड्रग्स हमेशा सुपरवाइज्ड रहता है।
0: ओके। आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन सी है सर?
1: मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो क्लासिकल है कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शस डिजीज का, जो हम लोगों को कोविड ने दिखाया। अभी इबोला का एक आउटब्रेक चल रहा है जो WHO ने भी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से फैल सके, बिकॉज हम लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, एक जगह में होता है तो दूसरा जगह में बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे थ्रू ships, imports हो, goods हो, या फिर ह्यूमन से हो कि एनिमल से हो, आ जाता है। सो ये चैलेंज तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका अगेंस्ट में ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो क्योंकि हमें आइदर उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स चाहिए, नहीं तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इन्फेक्शियस डिजीज का। दूसरा है राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से, कि हमारा फूड की वजह से अभी हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो, मेंटल हेल्थ हो, ये सब हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको इसका समाधान ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है। जो इन्फेक्शस डिजीज में है, हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर उसको रोक सके तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ज़्यादातर केसेस में ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो इसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मेजर थ्रस्ट एरिया होता है। तो ये एक इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है आजकल का रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ पोल्यूशन, इसके वजह से नए नए प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर पुराना प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। स्क्रीन टाइम हमारा, डिवाइसेस, सो ये सब नए चीजें हैं जिसका इफेक्ट नॉट ओनली ऑन आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑन मेंटल हेल्थ भी होता है। सो दीज आर न्यू चैलेंजेस दैट हैव।
0: तो इन पे अगर हमें कंट्रोल पाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर क्या सलाह देंगे हम लोगों को?
1: अगर हम लोग ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें, तो परहैप्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेस्ट। हम लोग तो हमेशा बचपन से सुनते रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये जो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा लाइफ स्टाइल, मोबिलिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस करना है, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, अभी बच्चे तो फास्ट फूड के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। हेल्दी फूड जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, चाहे कोई भी रीजन का हो, हफ्ते में कितना दिन वो एक्चुअल ट्रेडिशनल फूड्स लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनको मिलता नहीं है। इवन सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो जितना हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उतना होता नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत लोग स्लीप डिप्राइव्ड है। बच्चे अगर बहुत पढ़ाकू है तो रात को जाग के पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इफेक्ट होता है अपने सेहत के ऊपर। तो वो भी ध्यान देखना चाहिए, सेहत है तो भी पढ़ाई होगा,
0: बिल्कुल।
1: देन आता है एडिक्शन, ये एक मेजर इशू है। तो एडिक्शन बहुत तरीके होता है, इसको मैं स्क्रीन एडिक्शन भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है, बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन चलाना, देखना, कंप्यूटर्स के सामने। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग ज़्यादातर आजकल जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर्स के बिना तो चल नहीं सकते, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उसका भी इफेक्ट होता है। सो ये सब कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली स्ट्रेस, अभी शायद हर कोई स्ट्रेस में रहता है, यू cannot find anybody who is not under stress. लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए we have to learn to cope up with stress and manage them well.
0: Okay. उसी के साथ सर, आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो और हार्ट अटैक भी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन होगा?
1: मैं जैसे कहा है कि ये मेन रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल, और ये मल्टी फैक्टोरियल है। कोई भी एक फैक्टर से इसका हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हम लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना है। जो कंप्यूटर में, जो डेटा सेंटर में काम करते हैं, उसको तो नहीं बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने मत रहो, उनको तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ देर अगर वर्किंग पॉपुलेशन में है, फिट है, तो कुछ देर एक्सरसाइज करें। फूड, उसमें तो हर किसी का ध्यान होना चाहिए, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर स्टूडेंट हो कि रिटायर्ड पर्सन हो, हेल्दी फूड इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उनका जो डाइट के हिसाब से जो अच्छा सूट करता है, लेकिन विथ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, वो लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड एडिक्शंस, चाहे वो टोबैको का हो कि लिकर का हो कि इवन स्क्रीन का हो, ये अवॉइड करना चाहिए। स्लीप बहुत ज़रूरी है, दे शुड इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर साउंड स्लीप वट एवर टाइम पॉसिबल फॉर दम। थोड़ा सा अनुशीलन लाना चाहिए, अपने डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने लाइफ में, तो ये इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसो।

0: मेंटल स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर?
1: मेरे जानकारी के हिसाब से आज के दिन में 7 में से 1% कोई ना कोई मानसिक समस्या के शिकार है. सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद मेंटल, आई विल नॉट से डिसऑर्डर्स, बट एटलीस्ट विद सम प्रॉब्लम. इंडिया का सुइसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है, ये ट्रेडिशनली थोड़ा निगलेक्ट किया गया. हम लोग भी सोचते हैं कि ये, हम लोग बोलते हैं पागल है. पागल नहीं है, हम लोग सब स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है. जैसे फिजिकल हेल्थ भी होता है, कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता बॉडीली, वैसे मेंटल का भी सेम ही इशू है. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्ट्रेस का इशू है. स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमेशा कोई भी काम के साथ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की ज़रूरत है. अगर कोई म्यूज़िक में, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक करे, किसी को पेंटिंग करना आता है पेंट करे, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करे. तो ऐसे टाइप का आप अपना जो अच्छे चीज़ जो लगे उसमें थोड़ा मेंटली डाइवर्शन बहुत ज़रूरी है. जब ज़रूरत पड़े दे शुड इमिडिएटली कंसल्ट डॉक्टर एज वेल, क्योंकि दे विल बी एबल टू हेल्प देम आइदर थ्रू काउंसलिंग और इफ रिक्वायर्ड थ्रू ड्रग्स. मोस्टली काउंसलिंग से ही बहुत चीज़ें सुलझा जा सकता है. सो ये बहुत ज़रूरी है. अभी जो हम लोग विकसित काल जो बोल रही है, अमृतकाल में जो विकसित भारत का गोल्स है, उसके हिसाब से हम लोग मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा स्ट्रेस दिया गया है. बिकॉज ये अमृतकाल के बाद हमारे लोगों का जो एवरेज एज है, हम लोग बुढ़ापे के और जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा. और एज में मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया आता है, भूलने का आदत, सो ये आजकल बहुत जल्दी आने लगा है. थोड़ा और जाने के बाद वो अल्जाइमर्स टाइप का भी हो जाता है, तो कम्प्लीटली भूलने का जो आदत है वो हो जाता है. सो इसीलिए, बट दिस आर मोस्टली प्रिवेंटेबल. इसका अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं कि हम लोगों को एक्टिव रहना है. एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो डेमेंशिया के लिए बताते हैं लोगों, आपको कैलकुलेट करना या फिर थोड़ा पढ़ाई करना, तो क्या है, अपना ब्रेन को यूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है. इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल शुड बी एक्चुअली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें एविडेंस है कि आप जितने ज़्यादा ये पढ़ाई लिखा किया हो या फिर आप करते हो, तो उसमें आपका वो जो डिमेंशिया का ऑनसेट एज है वो डिले हो जाता है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप योगा करते हो कि कोई एक्सरसाइज करते हो, वो भी डिमेंशिया को डिले करता है. एंड इट हेल्प्स इन बस्टिंग स्ट्रेस आल्सो. तो इसीलिए दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ बीइंग प्रमोटेड प्रमोटिव हेल्थ में. सो हमें बीमार होना ही नहीं है. सो द बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. और जो पहले का हमारा आउटलुक था कि हम लोग हमेशा डिजीज बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे, अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन विच वी डू नॉट बिकम डिजीज्ड, वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो यही मंत्र है अभी.
0: बिल्कुल सर, युवाओं में ये जो बढ़ता तान तनाव है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा पाई जाती है, उसके बारे में क्या सलाह रहेगी?
1: ये जो मैंने बताया कि अमृतकाल का हमारा जो टाइमलाइन है, इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट हमारा जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत यंग है, बहुत प्रोडक्टिव है. और इसी प्रोडक्टिव एज को सब मिल के अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही भारत का विकसित प्लान के हिसाब से जाएगा. तो इसीलिए जो ये जो युवाएं हैं, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन में, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप. और दैट इज द रीजन व्हाई देयर हेल्थ बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी फिट and they have to be able to actually work and take India to the next level. So, इसीलिए they must follow these few principles of taking care of their health through proper diet, through proper sleep, through busting stress, तनाव कम करने के लिए, by having good habits, bringing in discipline in their life, avoiding substances for abuse, and leading a good, healthy lifestyle.
0: सर, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स रहे या फिर कई सारे मैसेजेस रहे, वो देख के कई सारे अफवाह रहती है, वो देख के लोग उसको फॉलो कर देते हैं और उससे उनके हेल्थ पे मतलब साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, तो इनसे हम कैसे बचे?
1: जो रील्स में आता है उसमें से ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत होता है और उसका कोई बेस नहीं होता है.
0: अच्छा.
1: So people should not follow blindly whatever

0: are told in social media and in reels. They should only follow those which come from authentic source. जो गवर्नमेंट का सोर्स रहता है कि एक्चुअल रिसर्च बॉडी जैसे ICMR का सोर्स है, इसी को ही माने. बाकी जो है दे शुड टेक ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो किससे सुन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: करेक्ट.
0: क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए
1: बिल्कुल
0: कुछ भी बोल देते हैं. हाँ, हो सकता है उन लोगों का रील्स ज्यादा शेयर हो, उनको वो स्टार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो सही है.
1: करेक्ट. तो वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके उस पे भरोसा करना चाहिए.
0: एग्जैक्टली. इसीलिए बेस्ट वे इज दैट जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स है, कि जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, ऐसे सोर्सों को बिलीव करें. और जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अगर KLE का ऑफिशियल हैंडल से कुछ निकलता है, सो पीपल शुड बिलीव दैट. जो दूसरा इंस्टीट्यूट का, जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट का, उसका ऑफिशियल हैंडल से कोई आता कुछ निकलता है तो उसको दे कैन बिलीव. लेकिन नॉट जस्ट एनीबडी saying something और उसको believe करके और उसका follow करना वो सही नहीं है.
1: बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है?
0: महिलाओं में particularly जो गर्भवती हैं, इन लोगों का health बहुत important है, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनका जो fetus है, जो बच्चे पैदा होगा, उनके लिए भी बहुत important है. Regular antenatal checkup होना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए. वैक्सीनेशन जो है वो लेना जरूरी है. जो IFA टैबलेट्स वगैरह जो आयरन के लिए जो दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, इसको कॉम्प्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो क्या है, बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है. जहाँ तक बच्चे का सवाल है, इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वैक्सीनेशन स्टिक से लें, जो भी वैक्सीन का रेजिमेंट है. हाइजीन उनको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनका इन्फेक्शन कुछ ना लगे, वो इम्पॉर्टेंट है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ एज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है. एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, बोथ मदर एंड चाइल्ड का न्यूट्रिशन हमेशा एकदम अच्छा रहना चाहिए. पोषण ठीक से होना जरूरी है. इवन अदरवाइज जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, तो इनका भी अपना सेहत के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली विद देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल.
1: इसी के साथ सर, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है?
0: डेफिनेटली. सबको जो 30 इयर्स के ऊपर है, उनको तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लोगों को देखते हैं कि दे आर फिट, लेकिन कभी उनका BP लेने जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है. सो क्या है, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दैट दे हैव हाई BP.
1: करेक्ट.
0: बिकॉज दे हैव नॉट चेक्ड. तो ये बहुत जरूरी है. सिमिलर थिंग विद ब्लड शुगर ऑल्सो, कि प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारा लोग पाए जाते हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि वो प्री डायबिटिक है. इवन डायबिटिक जो है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक है बोल के.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए ये जितना जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ठीक हो सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया डिटेक्ट करने में, तो देन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत रिगरस होता है, वो डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए जितना जल्दी टेस्ट करेंगे, जितना जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट और इवन रिवर्ट बैक फ्यू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस.
1: ओके. सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है?
0: आज के दिन में AI और टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हेल्थ और इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च. मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. ये जो डिजिटल और जो डिजिटल हेल्थ का है, ये जो भी आजकल का स्कीम्स जो लॉन्च हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो कि वैक्सीनेशंस का हो, सब आपके साथ आधार के साथ लिंक रहता है. एक ही जगह में आपको इमीडिएटली डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या वैक्सीनेशन लिया है, के कब लिया है, उसका कुछ डोज बाकी है कि नहीं. हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहली बार बहुत सारा केसेस ऑफ डिप्थीरिया डिटेक्ट किया बीजापुर और बागलकोट एरिया में. अब हम लोग जब उनका वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेने गए, उन लोगों को दे आर अनेबल टू टेल कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं लिया था, कब लिया था, कितना डोज लिया था, बता नहीं पा रहे थे. क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं था, कार्ड दिया जाता था लेकिन कार्ड में कितना एंट्रीज है डिजिटली कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, कार्ड खो गया तो खो गया. सो ऐसे होता है. लेकिन दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, लोगों को मरना नहीं चाहिए इसमें. लेकिन एक बार ये सब डिजिटाइज हो गया, देन यू कैन एक्चुअली गेट बैक योर डेटा वेरी इजीली. तो आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का हो, आपका ट्रीटमेंट का प्रोफाइल हो, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग न्यू थेरेपीज, इन डिटेक्शन आपका भी इतना सारा अभी गैजेट्स आ रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गैजेट डेवलपमेंट स्टेज में है, आईआईटी दिल्ली के साथ आईसीएमआर काम कर रहा है, वो एक वेयरेबल हेलमेट है जो टू व्हीलर में आप चल के अगर जाओगे, अगर आपको आप गिर गया फिर कोई सर पे चोट लगा तो दैट हेलमेट में ही सेंसर है, इट कैन एक्चुअली टेल यू कि आपको हिमरेज होने का चांसेस है कि नहीं है। सो इट कैन बी सच अ लो कॉस्ट एंड सच पोर्टेबल थिंग, आपको हमेशा उसके लिए MRI करने के लिए लेके जाने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए तो ये यूज हो सकता है अर्ली स्टेज में। लेकिन ये दीज आर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग, इसके साथ आप AI डाल दीजिए तो एक बार इसका AI के लिए भी तो हमें डेटा चाहिए, तो ये डिजिटल डेटा अगर जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल डेटा जनरेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग AI लगा सकते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, जो उसका रोबस्टनेस है वो बढ़ता रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ये हर फील्ड में हो रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, इतना बड़ा बदलाव फिर देख पाएंगे हम अगर वो यूज में आ गया तो।
0: ये आ जाएगा कुछ सालों में ही ये सब आ जाएगा।
1: अच्छा, डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य में किस प्रकार मदद करेंगी सर?
0: मैंने जैसे बताया कि डिजिटल हेल्थ होने से क्या है, एवरीथिंग बिकम्स योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, सब रिकॉर्ड्स में रहता है।
1: करेक्ट,
0: मैंने जैसे बताया कि डेटा ही ड्राइव करता है हमारा पॉलिसी, हमारा एविडेंस, ये सब एक साथ आप चुटकियों में आप डेटा निकाल पाएंगे और क्या ज़रूरत है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई एक पर्सन का भी अगर मेरा पूरा हेल्थ डेटा एक जगह में रहा, कोई भी डॉक्टर मुझको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट दवाई हो सकता है या फिर कुछ रेमेडी हो सकते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, ये आजकल ऐप आ गया है, ये आयुर्वेद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वाता पिता कपा है का वो जज करने के लिए ऐप्स आ गया है, तो ये बिकम्स मच इजियर और आप उसमें डालेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो आसानी हो जाता है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें डिजिटल हेल्थ इज एक्चुअली हेल्पिंग। देन इंश्योरेंस सेक्टर में तो है ही, तो बहुत सारा जो स्कीम्स आ रहा है जो पर्टिकुलरली फॉर द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्चुअली यूजिंग दिस हेल्थ टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर।
1: ICMR की भविष्य की योजनाएं क्या है?
0: अभी क्लासिकली हम लोग इंडियंस हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढने में बहुत माहिर है, लेकिन सॉल्यूशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता रहा है। सो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, इतना बड़ी देश है, इतने लोग हैं, अभी फोकस आ रहा है सॉल्यूशंस ढूंढने में। सो दैट इज वन मेजर फोकस मैं बोल सकता हूँ इन जनरल, कि हम लोगों का एक एक प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है एंड इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है। एंड दिस सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर इन टू हेल्थ रिसर्च, ये इंजीनियरिंग सेक्टर भी कर रहे हैं, IITs में भी इसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज वन मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड। सेकंड मेजर चेंज इज द एरियाज, मैंने बताया अभी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन टाइम का क्यों ना हो, ये जो डिजिटल, ये जो हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग जो हमारे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसका क्यों ना हो, या फिर इवन इन्फेक्शस डिजीज में ये महामारी टाइप का कोई पैंडेमिक आ गया तो उसका प्रिपेयरनेस क्यों ना हो, तो ये सब के लिए हमारा कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाया जा रहा है। मैं कोविड का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, दैट वॉज अ आई ओपनर। हम लोग तो बहुत जल्दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ वैक्सीन बना दिया इतना जल्दी में। अभी हमारा पास BSL-4 का जो एक लैब था, अभी दुनिया का, अभी इंडिया का बहुत सारा जगह में BSL-4 लैब्स बन रहा है, ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो जाए हर जगह में, दे बिकम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कोई भी कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि दे आर एबल टू केटर टू द नीड व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज। तो बोथ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये सब चेंजेस दिखने को आ रहे हैं।
1: अच्छा, स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है सर?
0: मैं तो कहूँगा ये एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है, करियर इन हेल्थ रिसर्च एंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज। जैसे कि ICMR के हर इंस्टीट्यूट में वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं जो बच्चे बैचलर्स के बाद या फिर प्रेफरेबली मास्टर्स के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं, वो आके अपने हिसाब से दे कैन डू द इंटर्नशिप, चाहे 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल का हो. सो उसमें उन लोगों को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च में. उसके ऊपर आता है PhD प्रोग्राम. ICMR का बहुत स्ट्रांग PhD प्रोग्राम है. ये हमारा ACSIR के साथ टाई अप है. ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है अंडर द ACSIR फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्रीज. इसमें फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है.
1: अच्छा.
0: और उसके साथ साथ उनका PhD करने का अवसर मिलता है. दे कैन चूज एनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ICMR नेटवर्क इन द कंट्री. ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरह ही मेरिट लिस्ट बनता है.
1: okay.
0: और जो टॉप रहते हैं मेरिट में तो दे कैन चूज देयर इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड दे कैन गो देयर एंड डू द PhD. PhD होने के बाद पीपल कैन कम एज पोस्ट डॉक्टरल फेलोज. बहुत सारा फेलोशिप्स वगैरह मिलता है वेरियस ICMR इंस्टीट्यूशन में. और अगर दे वांट टू बिकम परमानेंट फैकल्टी, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, हम लोगों का हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट कैडर में हम लोग आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है. तो दे कैन अप्लाई व्हेनेवर दिस वैकेंसीज आर डिक्लेयर्ड. सो इट कम्स इन द ICMR एंड द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स. इट कम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार समाचार में आता है. उसमें वो देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट ICMR का हो गया. ये छोड़ के जो हेल्थ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस अदर देन ICMR ऑल्सो, बहुत सारा ICMR का प्रोजेक्ट चलता है बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में. मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स होता है जो DHR के अंडर आता है. मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स है जो मेडिकल कॉलेज में के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो ICMR और DHR फंडेड है. इसका सिवाय इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल रिसर्च का बहुत महत्व दिया जाता है. तो उसमें रिसर्च सेल्स, रिसर्च यूनिट्स बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च अपॉइंटमेंट्स किया जाता है एट वेरियस लेवल्स. उसमें भी आ सकते हैं,
1: यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज है,
0: काफी है और ये बढ़ रहा है.
1: युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो कहूँगा रिसर्च एक ऐसा चीज है वेयर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स. यू कैन ड्रीम एंड यू कैन फॉलो द ड्रीम. तो आप अपना हिसाब से आपका सपना देखो और वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप रिसर्च को ले लो. और ये एक हमारा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप बताते हो कि आप क्या करोगे. ऑफ कोर्स मेन मैंडेट में होना है, लेकिन आप बताते हो कि आप क्या करोगे. उसके लिए आपको फंड्स मिलता है, चाहे सरकार से हो कि कोई अदर फंडिंग एजेंसी में. तो आपको आपका काम, आपका सोच को साकार करने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी दिया जाता है और उसका जब रिजल्ट निकलता है वो भी आप आपके नाम से पब्लिश करते हैं.
1: करेक्ट.
0: और नॉट ओनली दैट, इफ योर पब्लिकेशन एंड इनोवेशन इज गुड इनफ, आपका जीवन के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाएगा और जो सब्सिक्वेंट लोग हैं वो भी आपका नाम कोट करेगा आपका पेपर का हो कि इनोवेशन. ये मौका किसको मिलता है?
1: बिल्कुल.
0: तो ये भी देश का ही सेवा है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमेशा रिसर्च को एक करियर बनाओ. और इसमें हर चीज, हर दिन एक नया चैलेंज होता है तो मोनोटोनी नहीं आता है और आप अपना ड्रीम को परसू कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. आखिर में सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश रहेगा?
0: मैं कहूँगा कि जो ये हेल्थ रिसर्च और हेल्थ का जो इकोसिस्टम है ये एक बहुत ही बड़ा रूप में उभर के आने वाला है अगले कुछ सालों में. ये एक अपने हिसाब से एक उद्योग, एक इंडस्ट्री करके बन रहा है. इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फॉर अस सीकिंग हेल्थ और सीकिंग वेलनेस, इट इज ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन टेक्नोलॉजीज, इन डिवाइसेस, इन सर्विसेज. तो इसीलिए बहुत सारा जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस है उसका भी बहुत सारा मौका है. इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरली दैट एवरीबडी कैन हैज टू कम इनटू द रिसर्च इटसेल्फ, बट दे कैन कम इनटू वेरियस वेज इनटू द हेल्थ सेक्टर. देयर आर प्लान्स, बहुत बड़ी प्लान्स है, जो हील इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है. इसको सब इकट्ठा देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है ये हेल्थ सेक्टर का. और इसमें वी इनवाइट एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लेट अस टुगेदर मेक इंडिया वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कंट्री अंडर द विकसित भारत 2047.
1: थैंक यू सो मच सर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए
0: धन्यवाद. थैंक यू.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केलिवेनोथोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। डॉक्टर सुबर्णा रॉय हमारे साथ थे, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।

0: Changi.
1: Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation द्वारा संचालित Community Radio Association द्वारा निर्मित
2: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लगता है सब आज मस्ती के मूड में हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप ट्यून कर चुके हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सुहावनी शाम में, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और मैं हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का प्यारा सा दुलारा सा हैंडसम आरजे दोस्त, यानी कि आरजे आयुष। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपने वो टॉपिक का नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, या आपको वो फीलिंग कभी ना कभी आई होगी कि भैया ये जो मेरे साथ घट रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है। क्या आपको कभी वो फीलिंग आई है? चलिए तो आप सोचिए कि आपको क्या वो फीलिंग आई है। तब तक के लिए मैं सुनाता हूँ आपको कुछ चटाकेदार सॉन्ग्स, तो बने रहिए और जानने के लिए कि क्या है ये नया टॉपिक, सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू विद आरजे आयुष।

दोस्तों, वेलकम बैक वन मोर टाइम टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। आप सुन रहे हैं ध्वनि ध्वनि वेनु ध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनसू। दोस्तों, आज के इस टॉपिक का नाम है डेजा वू। आपने भी ये नाम कई बार सुना होगा। टुडे वी आर अनरिवीलिंग द मिस्ट्री ऑफ फेमिलियरिटी, जिसका मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। टुडे वी गोना डाइव डीप इनटू द डेस्टिनेशन वर्ल्ड ऑफ डेजा वू एंड वी गोना एक्सप्लोर द साइंस, द साइकोलॉजी एंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस पजलिंग फेनोमेना। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में डेजा वू एक्सपीरियंस फील कैसे होता है। अगर कहीं आप गए या आप कोई चीज कर रहे हैं और आपको वो फीलिंग आती है कि यार ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इवन तो इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, आप एक नई जगह पर खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अचानक से आपको लगता है, एक फ्लैशबैक आता है कि यार मैं इस शख्स से पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन आपको लगता है यार नहीं, मैं तो इससे पहली बार मिला हूँ। वो जो कॉन्स्टेंट फीलिंग और एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं डेजा वू। चलिए थोड़ा और डीप जानेंगे इसी के बारे में आफ्टर सम हॉट टचिंग सॉन्ग्स। तो आपको सुनते रहना है हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

Hello, welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen, and people of all the ages. You have tuned into Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu with RJ Ayush, और आज हम बात कर रहे हैं उस mysterious शब्द के बारे में जिसका नाम है deja vu. और दोस्तों, अगर आपके साथ भी deja vu हुआ है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. 60-80% लोगों के population के साथ ये हमेशा होता है और बहुत common और normal है, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई health condition हो चुकी है. This is very, very completely normal. Deja vu experience tend to end as soon as they begin. मतलब जैसे ही अगर वो experience आपको शुरू होता है, वो एहसास आता है, तुरंत ही ये वैसे ही चले जाता है. और ये sensation आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है अगर आपको deja vu के concept के बारे में पता नहीं है. तो you may not even realize कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या. हो सकता है आप थोड़ा सा unsettled feel करो, लेकिन वो experience तुरंत ही आपके दिमाग से चले जाएगा और तुरंत ही आ जाता है, तुरंत ही चले जाता है. ये इसकी खासियत है. चलिए जानेंगे ये होता क्यों है, क्या राज है इसके पीछे. लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार और सुनते रहना होगा हमारा शो. Be relaxed only on Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu पर.

दोस्तों चलिए जानते हैं कि डेजा वू होता क्यों है। कई एक्सपर्ट्स ने इस पर अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है। चलिए समझते हैं। पहली थ्योरी यह है कि स्प्लिट परसेप्शन। इस थ्योरी का मतलब यह है कि डेजा वू होता है जब आप दो चीजों को एक ही बार में देख लेते हैं। द फर्स्ट टाइम यू सी समथिंग यू माइट टेक इट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई, और फिर आपका ब्रेन एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर देता है जिसकी इन्फॉर्मेशन तो कम होती है, क्योंकि आपने उस चीज को बस एक झलक देखा है। आपको लगता है आप उस चीज को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन योर आईज हैज सीन इट, और उसी को वो एक याद बनाकर आपकी मेमोरी में फिट कर देता है, और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ हुआ है पहले, जबकि वो पहली बार हो रहा होता है। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक नदी को एक झलक देख लिया, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका ब्रेन एक सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक याद बना देता है, एक मेमोरी बना देता है। लेकिन जब आप दोबारा उस नदी को देखेंगे, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, आपको लगेगा कि यार मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन आपकी आईज ने उसको देखा था, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी निकल कर आती है, और आपको लगता है यार ये मेरे साथ पहले हो चुका है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट परसेप्शन। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। चलिए सुनते हैं कुछ जबरदस्त गाने ताकि आपकी मेमोरी थोड़ी सी ताजा हो जाए। सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: क्या हुआ? गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

नमस्कार। आकाशवाणी के इस सुंदर कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोता मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं वैष्णवी शिंदे कैली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय की फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी से वक्रतुंड विषय पर बात करना चाहती हूँ। वक्रतुंड अर्थात वक्र सुंड वाले भगवान गणेश। लेकिन ये केवल गणपति का एक नाम नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक सुंदर दृष्टिकोण भी है। जीवन हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता, उसमें कई मोड़ और बाधाएं आती है। गणपति की वक्र सुंड हमें सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारे महाविद्यालय में इस वर्ष गणेश उत्सव की सजावट में हमने भगवान गणेश को एक घने वन के बीच विशाल वृक्ष की छाया में साधना करते हुए दर्शाया है। चारों ओर हरियाली, वन औषधियों और प्रकृति का शांत वातावरण है। यह केवल एक सजावट नहीं बल्कि गणपति प्रकृति और आयुर्वेद के बीच एक गहरे संबंध को दर्शाता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रकृति को ज्ञान का स्रोत माना गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान भी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद में औषधीय वनस्पतियों, स्वास्थ्य और उपचार से संबंधित अनेक संदर्भ मिलते हैं और आगे चलकर यही ज्ञान चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग हृदय जैसे महान ग्रंथों में व्यवस्थित चिकित्सा शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। इसलिए वन में साधना करते हुए गणपति हमारे लिए ज्ञान, प्रकृति और स्वास्थ्य से सुंदर संगम का प्रतीक है। गणपति का यह ध्यानमय स्वरूप आज के जीवन में भी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज हमारा जीवन मोबाइल, सोशल मीडिया, पढ़ाई, काम, प्रतिस्पर्धा और तनाव से लगातार भाग रहा है। ऐसे समय में वन की शांत में बैठे गणपति जैसे हमें कहते हैं, थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए और अपने भीतर झांकिए। साधना केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, मन लगाकर पढ़ना, अपने क्रोध और पर नियंत्रित रखना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और प्रकृति की रक्षा करना भी साधना है। गणपति का बड़ा सिर हमें व्यापक से सोचने, बड़े कान अधिक सुनने, छोटी आंखें एकाग्रत और वक्र सुंड परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की सीख देता है। अनंत हमारे वक्रतुंड की यह संकल्पना हमें याद दिलाती है कि हम वन हमारी प्रकृति है। वन औषधियों आयुर्वेद का प्रतीक है और साधना में लीन गणपति ज्ञान एवं आत्मचिंतन के प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी हमें अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। शायद इसका अर्थ केवल बाधाओं को दूर करना नहीं बल्कि बाधाओं को पार करने की बुद्धि, शक्ति और धैर्य प्राप्त करना भी है, क्योंकि रास्ता टेढ़ा हो सकता है लेकिन लक्ष्य टेढ़ा नहीं हो सकता। वक्रतुंड का आशीर्वाद हम सभी को ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति और साहस प्रदान करने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।

0: क्या हुआ? गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। चलिए कुछ और थ्योरी जानते हैं, जैसे मेमोरी रिकॉल। अब इसमें यह होता है कि कोई चीज या कोई इवेंट आपके साथ ऑलरेडी हो जाता है तो आपके पास में या फिर चाइल्डहुड में हो जाता है या आपके पास में कहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं सालों के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ आपको याद नहीं रहता वो या आप याद नहीं रख पाते, और अगर दोबारा आप उस जगह जाते हैं या उस चीज को देखते हैं तो तुरंत आपको वो याद आने लगता है, जिससे आपको वो डेजा वू वाली फीलिंग आती है। You may have experienced this yourself. Many people report that deja vu experiences trigger a strong conviction of knowing what's going to happen next. But clearly, research suggests that even if you feel certain, you can predict what you are about to see or experience. You generally can't. तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराए नहीं, ये बहुत ही कॉमन है। चलिए अब थोड़ा सा म्यूजिक सुनाता हूँ क्योंकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, आपको बैठना है एकदम रेडियो के पास और सुनते रहना है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू विद RJ आयुष।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु विद आरजे आयुष। दोस्तों वैसे तो देजा वो बहुत कॉमन है, लेकिन जानते हैं कब आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए, कब आपको इसको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ सकता है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ फोकल सीजर्स, जिसका मतलब ये है कि व्हेन नर्व सेल्स इन द ब्रेन सेंड आउट सडन एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इट कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग टू। हो सकता है आपको पूरी अवेयरनेस हो आपके सराउंडिंग्स की, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्ड ना कर पा रहे हो, जिससे लोगों को ये लगता है कि आप जोन्ड आउट हो चुके हो या आप ख्याली दुनिया में हो। ये भी एक तरीके का कारण हो सकता है। आपको सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लॉस ऑफ मसल कंट्रोल भी एक सिम्टम हो सकता है। हेल्यूसिनेशन, जिसका मतलब किसी चीज का टेस्ट स्मेल आना, एहसास होना जो वहां पर है ही नहीं।

वेलकम बैक वन मोर टाइम। यू हैव ट्यून्ड इनटू वेनु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु। दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारियां दे दी है। डेजावू के बारे में तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स भी है तो यस आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें जरूर दिखाए और अपने थॉट्स को भी उन्हें बताए कि आपको क्या फीलिंग हो रही है, क्या लग रहा है। तो डेजावू कॉन्सेप्ट आजकल काफी ज्यादा चर्चित है, पॉपुलर है और आजकल तो इस पर भैया आपने देखा ही होगा कई सारी फिल्में बन भी रही है और किताबें भी लिखी जा रही है। फ्रॉम लिटरेचर टू सिनेमा डेजावू हैज फाउंड इट्स वे इनटू क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। आइकॉनिक सीन्स फ्रॉम मूवीज एंड बुक्स वेयर कैरेक्टर्स ग्रैपल विद द ईरी सेंसेशन ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशंस। मतलब भैया आपको डिफिकल्ट हो सकता है पता लगाने में कि ये क्या हो रहा है, ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE FM। बाय बाय, टेक केयर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसों और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।